0: का नशाला
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: बैर दोई
1: हाँ है मी मामा रे बैर देंगे खड़ी देते हो रही
0: देंगे
1: हाँ अम्मी रोटी फी हनी
0: हो देंगे बसार फिर देमी हमारे बसार दे हमें क्या
1: एकड़ मैं कर दो मैं यार
0: हाँ
1: फिर मी हाँ बोलू का मेरे नूने दो ठीक ही
0: हाँ बोलो खाओ करना वेरे मी नहीं अब जो है उलेटी वेरे मी यारे हाँ बोलो खाओ करना वेरे
1: कम में दो को फिर मैं मेन ना नहीं थी ऑटो ये ले ही फटा दो कुसुमा
0: मौसम
1: को बामू सुन के ने मने थी रशा
0: नहीं अभी दीफा वरवे मर
1: अभी दीफा वाला वैव्स मर कौन रशती
0: जेनो
1: नून दो ओके है मैं मिहा हिसाब में उड़े नहीं बिका होगा तो करने का दो है मीमा
0: वाले
1: तेरे नंगाले ने तिपुनी नूंग अभी दीफे होती
0: हाँ मैं कुरियर दे मैं पुणे दे दो मैं मिते होने ही रुका सब उन्हें मैं पिकने की जस्ता मौसम को उसको मनु दे मन
1: कौन था कितना
0: इन्होंने
1: साल है
0: यहाँ पिकने की जाम
1: मिहार भी जोगी मैंने मीवी का पिकनिक देवे वरु आने हैं मिहार में उत्ती बारे रंगला करना दो
0: एहम वजीद का मियार मौसम हाली में दो यार मैं हफ्ता एक पोनोले मैं बांधु दे दोस्तों ना
1: देन हफ्ता गदे कुरियन इत्ता गति बने हव एक गुद के स्नेह के बादल से दाने दो एकम को मिहार में
0: आ
1: गुतंगा दे मोती वार फक्का को दो
0: सार
1: नु नु
0: एक
1: देवे खाल
0: फूल
1: गुत
0: वाला टेस्ट हफ्ता दे देवे का बस नहीं है
1: ठीक है दे मिहार टेस्ट तो फिशिंग दे मिहार में कुरिया स्कूल के से दाने दो हेमा पर ते बने दांग उंद गुवान
0: अरे उंद गुदन बाने वीकेंड के दांज है
1: वीकेंड नूनस दतुरदा
0: दां हाँ ऐहें उल्ला मेंदर फॉर्स गोस्ला ऐ कम यहाँ टेस्ट भी वा मैं हफ्ता नो दे बैंड द सैटरडे के दाम भी ऐ उल्लो ने तो बियर अब विस्तार है तो
1: विस्तार है रुको उसके दंगे हाँ हाँ मजे नो करे बैंड में
0: मजे तो बस नो आ नो दे अने इन बुने ये दे उधर अ फक्का वा ना तो हस्बैंड नो दे
1: ते बुने मोदंगे ने मरा फक्का माँ अभी बारो नो मिल जाए या तो
0: अभी गादे नो नहीं आ रहा लो आने मोदेरे
1: मिया तो मीन एक हटे देना सेबे दुसुमा में गुला कंगे है नूना बदे मिठाई ने कहा फूल वे कहा लाखों करने के वाले
0: प्रोग्राम निम्मा देंगे
1: नसीब हम तिखाल में हम तीबे कंगे है नूना बदे मिहार इन्ना ने गेट डांस ही फकरने
0: एंडो
1: दो है ने नूमानी ओके है मैं मिया तो सैग कंट आदि तिकोलो निम्मा ले बारे नूए तो दुसुमा
0: निम्मा
1: में जाने मेरे नूए जार बराबर दो ओके इंगा हम विमा लावे इंगा डुबा हाला मा दो कौन लावे गेने स्टेम भी
0: ऐसे इन्ना लावे
1: मिले तुम से बिचड़ के हम दो असलो लावे की
0: हाँ ऐसा
1: हाँ एक हम दूसरों माले पर मेरे लावे आगे मेरे तो तेरे
0: दूसरों हाँ मेरे तेरे लिए लावे लिया दूसरों वाइगर डी हाँ इतना
1: ओके मैं जो फुर्त मामले रहा हूँ लावे गेने से वो गेने से दूसरों माया दिफ़े लावे इंगे दूसरों माँ खास कॉलर मी हिंगे बोरी था
0: आज तो कॉलर मैं जो देंग अरे फैमिली या लव रीत हुई है खुद है ना
1: ओके ए मतलब अगेन
0: दुआ कर दे मिजो
1: हम दोसो मैस मिजो के फरा तो वरा मुफा रे वरा बाज वे दुआ कंग दे नेंगे ए मामिल राव के लवे फो गेने से ना दोसो मारी रिक्वेस्ट को फे लवेंगे
0: ओके
1: ओके लान में
2: ओके नुदी हे के मेगाहर्ट्ज दिवे हे एफएम के कोम में गाड़ी रे के फुरतम लवे कवस दिवे हे अमिल राव के लवे

0: दिवही एफएम 91 मेगाहर्ट्ज
1: आम गोते गाहने की वारंग हंदार नेते मी है बाय दोस्तो खांग अने बाय दोस्तो फोनवन जे मेल त फोनवन बर्थडे से हंदां कुरंग अदि मा उंदगु कमे एकम को बिल त दक्कंता दुव हकवे संदान नुनते ने करंट बिल फेम बिल फोन बिल कस दहिन नुवान हंदां वेसुरे वगुतुम वगुता फाहिपे मेदुरी को फ्यासावेस ट्रांसफर करेवे कागेन बिल कंडाला फा पेमेंट रिक्वेस्ट वेस फोनवे साडी दो गेम में गे रिचार्ज वे सम फाहिपे अनलिमिटेड रीलोड अदि रास्टस ताज़ा के हुरिहा मुआमलाते फाही पे में दोरी को फाही पे वारा फाही

इंडिया के मशहूर लवक्युंतरिया अभिजीत भट्टाचार्य वनी नवारस्ते का फस्तल स्थिमन आहार के क्लासिक लवा चलो एक बार फिर से अमिले री रिकॉर्डिंग हदा कवर किया फा अभिजीत के मडमैतिर अडुं किया फवा मीला वैगे रागुस वनी वर मडमैतिर अडवा हालम फसे हराग का तैयार को फा एना मीला वा कवा को गें किया फवनी ट्रिब्यूट है दिनमुगे गोतुं।

0: 91 MHz 2F Abadus Emmegat
1: Lavafita Lavafita
2: Me Lavafita
3: Heda
2: Majama Holega Kuttu Meneti Foriga the Lavatakaiko
3: Music Change
1: हम एक कहने लो दिए के मेगाहर्ट्स दिल ही एफएम
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई
2: है अंगर धोगे रेगंडो अग्गड़ फन रहेगा स्टूडियो इन वागुतो एल्लावे एक अमाकु आ आडे
5: आँखों से तूने ये क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा
2: आ बीटें

0: कौन का लोटरी की फिल्म तक के मेगी ने बालनी इश्की का मुंह में इश्की फिल्म ता तंगे बहुरे दिवे ही या दिन बेरो बस भोगे की फिल्म ता वेस्तो हिंदी इंग्रेजी दिन मिहारो कोरियन ने चीव सरमी हूं बाला ता दो
1: एवर कब बेदे करने के असलो दिवेसा हिंदी या दिन मिहारो असलो वर्गीन बेदे कोरियन ने ची
0: हम लोबी के ची
1: लोबी के कोरियन के रीति हम लोबी के ची
0: ओ हम हमारे लोबी या दिमाला दाम ही है दोती एको तो मिवानी दो ते मिये तो के मूवी मोड शोइंग एम में कम दा फिल्म के भाग आस्तो हारो दक्कर निंगे मिगा एम लशन ने एम में कम दा फिल्म का नगानी कौन फिल्म है
1: हिंदी ता दिवे ही ता
0: कौन में कहा लेवेस नगाफ ताम भर में दी फिल्म
1: एम में रीति फिल्म का बनाने सनम तेरी कसम में
0: सनम तेरी कसम दे इंगे तो मी मिजु अबे से मारे रीति फिल्म इंगे आस्तो को बम फिल्म के हास्य कम की
1: मी फिल्म का आस्तो स्टोरी वाला रीति तो देन एंडिंग बने विदाने dera ending ne ina swara reeti ending ek me film ga ini then eti fashion insure nemen den e dia goi ekada e hituga haruli harulondo ei bunal dan echade
0: ti ka halashiga ka vedanta
1: vedane a bunal
0: okyo ka vedanti bunai hame gut kes ne devara lobido em sanam teri kasam ge wahaka mesa ka mi hek kare me film ga waage कुरुको बुने देवे जलाशन बुनाने की हिने वा फिल्म के में
1: कुरुको बुने देन्या बुनाने कोमेश्वर का बदनसीब अंगहें कुछ जगे देरियोलुम ऐमी हा का है दी ऐना देन ऐना के देरियोलुम फाहुं कुड़ाकोर रंगालुवे गोएदो मेगे असलो बुने देन ऐवलेनी ऐकम कुरुको बुने न्या बुने वेनी ऐहें कामे कुरंग उलोमुगे तेरेगा दिमावी मी है देखे लोबे बेबुं गोएदो मी असलो देन ऐना के फैमिली misunderstanding nakun dimavi kame ka hedi ekujja kore matlanje hun kanta takke ke wahak smega dekhe vidan
0: okay ehme mara kamuda film ka me vi ehme kamuda film inge member balalum ke test tayyar wefata tini
1: tayyar
0: kita farhan me film balafe
1: miyado es kuda ko balaf mehma miyado evi saada wana faharo
0: saada faharo balafe ma dialogue ay tin hunran thana misa ka bizu ahali me ne tane ka kiya dialogue he me chai hem bunang inge ne ta
1: mi vene tane ke bunafe ne da ekam dialogue inge ke misa ka film ka highlight ko for dialogue singi da
0: wo aslo ta okay he me hinga fur ta film ke lavata kon lave ka da inge lave pahu ek ka swal ta ka ke ha me bad ko la okay

0: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
1: क्या?
0: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता?
1: मैं क्यों लिखूंगी?
0: तो ये सारे कार्ड्स,
1: वो तो
0: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
1: नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
0: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?